शांति शांति शांति। प्लीज ओपन योर आईज एंड जस्ट टेक योर हैंड्स बेंड। एवरी डे व्हेन यू स्टार्ट योगा प्रैक्टिस it should be started with a prayer or prayerful mood. For that a principle is Shaucha and Santosha are the two fundamental principles to begin yoga sadhana.